सम्मान योग उपस्थित गुरु रूप सत्संग जीओ, गुरबाणी विचार आप जी के समक्ष पेश करा। पेशतर गुरमत मर्यादा अनुसार फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जाप साहब दे आए एक छंद तो गुरबाणी विचार तुच्छ बुद्धि अनुसार आप जी दे सामने रखने की एक निमाणी जी कोशिश कर रहे हैं। छंद है, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे बोल, अमान है, निधान है, अनेक है, फिर एक है। निधान है, तू गुणा दा खजाना है, तू शक्ति दा निधान है, तू सुहप्पन दा खजाना है। लेकिन अमान है, तेनू मान नहीं है, ना अपनी शक्ति दा, ना अपने स्वप्न दा, ना अपने गुणा दा। तेनू किसी भी गुण दा मान नहीं, तेनू अपनी समर्था ते शक्ति दा कोई मान नहीं, तेनू अपने स्वप्न दा, सुंदरता दा कोई मान नहीं। प्राचीन उपनिषदा दे ऋषियां ने परमात्मा दे ए तीन गुण मने ने, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत है, शिवम वो प्रकाशमान है, और वो अति सुंदर है। उसनु वैदिक ऋषियां ने बयान कीता, सत चित आनंद। वो सत है, चित वो चेतन है, वो आनंद स्वरूप है। उसनु धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इंज बयान कीता, सत सुहाण सदा मन चाव। तू सत है, सुहाण तू अति सुंदर है, सदा मन चाव तू आनंद स्वरूप है, खिड़े आवे है। तेरे विच खेड़ा ही खेड़ा है, तेरे विच हुलास ही उलास है, तेरे विच चाव ही चाव है, तू कदी मुरझांदा नहीं। ऐसा जो शक्ति दा सोमा है, ऐसा जो स्वप्न दा खजाना है, ऐसा जो गुणा दा मरकज है, केंद्र है, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहिंदन, अमान है, तेनू कोई मान नहीं है। किसी भी गुण दा, अपनी शक्ति दा, अपने स्वप्न दा, अमान है, निधान है। अगली गल, अनेक है, फिर एक है। तू एक होंदा होया अनेक है, और तू अनेक होंदा होया एक है। ये तो पहली जापेगी, जो एक है वो एक ही हो सकता है, अनेक किस तरह होवेगा? और जो अनेक है वो अनेक हो सकता है, एक किस तरह होवेगा? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, अनेक है फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है, तू एक होंदा होया अनेक है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा पहला अक्षर एक। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी एक तो आरंभ होंदी है। गुरु नानक दे कंठ तो जो पहला उद्घोष होया, गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्मनाद प्रगट होया, एक गणत दे ते हिंसा है, एक नहीं, गुरु नानक दे कंठ तो ये ब्रह्म वाक होके प्रगट होया है। गुरु नानक दे कंठ तो ये पहला उद्घोष है परमात्मा दे संबंध विच, एक। उस एक दा स्वरूप की है, उस एक दा स्वभाव की है, उसकी हस्ती की है, उसकी समर्था की है, सारी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी फिर उस एक की व्याख्या। और फिर फैसला गुरबाणी का, पता है कि एक वस्तु बूझे ता होवे पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। अगर उस एक नू समझ जाए ते तू पवित्र है, अगर तू उस एक नाल जुड़ जाए ते पवित्र है,
ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਨਾਪਾਕ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਢੇਰ, ਗਲਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਆਇਆ ਮੈਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬੂਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ, ਨਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਮ ਤੋਂ ਹੰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਮੈਲਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੈਲੀ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦ ਮੈਲਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਸਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਏਕ ਵਤ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਹੋਵੇਂ ਪਾਕ, ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਖਸ਼ਣੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਪਾਕ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਿਨ ਬੂਝੇ ਤੂੰ ਸਦਾ ਨਾ ਪਾਕ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ, ਪਹਿਲਾ ਅਕਸ਼ਰ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਹਿਦ ਗ੍ਰੰਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਬਾਣੀ ਆਰੰਭ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਅਨੇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਤਵੱਜਾ, ਧਿਆਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਉਹ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਔਰ ਖੁਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਆਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਨਿਰਾਕਾਰ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਅਨੇਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਗੁਣ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਜੇ ਕੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਿਰਲੋ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ ਵਿਚਾਰੇਗਾ, ਔਰ ਬਿਰਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਹੱਥ ਬਦਲ ਗਏ, ਪੈਰ ਬਦਲ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਗਿਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ, ਚਿਤਵਨੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਆਚਰਣ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਿੰਤਨ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਭ ਕੁਛ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਦਲਦਿਆਂ। ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਯੁੱਗ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਚਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ।
और जे व्यक्तिगत रूप दे किसे एक मनुख दे विचार बदल गए ने तो उसकी दुनिया बदल गई, उसका व्यवहार बदल गया, उसका आचार बदल गया, उसकी तर्ज जिंदगी बदल गई। सब कुछ ते विचार है। इस रूहे जमीन दे इको एक कौम है सिख जो विचार नु मत्था टेक दिए, विचार दे खजाने, विचार दे मरकज, विचार दे केंद्र धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नु मत्था टेक दिए। इस वास्ते सिख अविचारी नहीं चाहिदा, सिख अज्ञानी नहीं चाहिए, एदा ते गुरु ही ज्ञान है। ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम भी बहुत लगाओ, जिसका गुरु ज्ञान होवे तो वो आप अज्ञानी होवे। जो विचार दे खजाने दे अगो मत्था टेकदा होवे ते खुद कोई विचार ना होवन तो शायद मत्था टेकना भी पखंड हो जाएगा। वाकई कईयां दा मत्था टेकना भी पखंड है। शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे, कि तेरा मत्था टेकना की मैंने रखता है। जिस दे अगों तू झुक रहे हैं ना तेनू समझ, ना तेनू बोध, ना तेरी श्रद्धा, ना तेरा भरोसा। इस शीस निवाइए क्या थिए जा हृदय कुसुदे जाए। हो सकता है कि तेरे दान देश भी पखंड होवे, तेरे मत्था टेकन देश भी दुबाजरा काम होवे। दरअसल विचार बदले बिना मनुख की तर्ज जिंदगी नहीं बदलती। इत्थे सब तो वड्डी भेटा केड़ी रखनी है गुरु दे अगों? धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना चांदी अर्पण करना, ये पूरने पाने ने। जैसे पहले पहले मासूम बच्चे नो लिखना सिखाया जाता है तो उस्ताद पहले पूरने पाता है, ये पूरने ने। धन अर्पण करना, अन्न अर्पण करना, वस्त्र अर्पण करने, सोना अर्पण करना, चांदी अर्पण करना, इस सब कुछ इस वास्ते है ताकि एक दिन मनुख नो अपने विचार अर्पण करने की जाच आ जाए, अपना मन अर्पण करने की जाच आ जाए। मनुख का मन की है, विचारां दी मूर्ति होर की है, ये भेंट करने की जाच आ जाए। और जिस दिन ये अपने विचार भेंट करता है, गुरु अपने विचार इस नूं दे देंदा है। मनुख दे विचारां विच लोभ है, गुरु दे विचारां विच संतोख है। मनुख दे विचारां विच काम है, गुरु दे विचारां विच राम है। मनुख दे विचारां विच हंकार है, गुरु दे विचारां विच निरंकार है। मनुख दे विचारां विच क्रोध है, गुरु दे विचारां विच दया है। मनुख दे विचार विच मोह है, गुरु दे विचार विच प्रेम है। ए क्रोध भेट करे ते दया मिले, ए काम भेट करे ते राम मिले, ए हंकार भेट करे ते निरंकार मिले, निर्माणता मिले, विनम्रता मिले। तो मैं अर्ज करा अपने मन नु भेट करना की, अपने विचारां नु भेट करना। ते हुण मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच है की, कदी बगौर मुताला कर लेना। जैसे किसे मनुख ते प्रश्न करिए तन की है, तो चार शब्दों की व्याख्या की जा सकती है। तन हड्डियां है, हड्डियां दे उत्ते चढ़िया होया मांस है, मांस दे उत्ते चढ़ी हुई मिंज है, और मिंज दे उत्ते चलदी हुई एक खलड़ी है, स्किन खलड़ी है। इस खलड़ी दे थले मिंज है, मिंज दे थले मांस है, मांस दे थले हड्डियां है। आखिरी ना चारा का मजमूआ ही तन है। और भगत कबीर कहते ने बिस्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस ऊपर ले रखियो गुमान है कि तेनु हड्डियां दा माण है, तेनु मांस दा माण है, तू मिंज ते हंकार कर रहे हैं, तू इस खलड़ी ते अपनी होमे प्रगटा रहे हैं। कदी बगौर मुताला करना तन दा हंकार की है, खलड़ी दा हंकार। जैसे असी वख वख रंग दे कपड़े पाए ने, परमात्मा ने एक रंग दी खलड़ी किसे नूं नहीं दिती, और खलड़ी ही कपड़ा है। कर्म ही आवे कपड़ा, नदरी मौख द्वार, कीते हुए कर्मा दे मुताबिक शरीर रूपी चोला सानूं मिलदा है। पर इस चोले दा रंग, इस कपड़े दा रंग भी रब ने वख वख दे दिता। किसे नूं गोरा, किसे नूं काला, किसे नूं सांवरा, किसे नूं लाल, किसे नूं जर्दी मायल, किसे नूं गेहूआ रंग, एक रंग नहीं है। तू देखी जगत उपाया, परमात्मा की पसंद भी यही है, एक रंग नहीं, अनेक रंग तेरे नारायणा, अनेक रंग, बेस्तर रंग। और सारे रंग चूंकि उत्थों आए ने, इस वास्ते सारे रंगों नारायण है,
रंग सबे नारायण जेते मन भावन। खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, तन की है? तन हड्डियां है, हड्डियां दते चढ़े होया मांस, और मांस दते लिपटी हुई मिंज, और मिंज दते चढ़ी हुई है खलड़ी। ते जे हुण कोई प्रश्न करे मन की है, तवज्जा, मन की है, वास्तविक मन की है? मन विचार है, मन सोचनी है, मन चितवनी है, मन आहंग है। ये चार शक्तियां दा मजमू है। जैसे तन चारां दा जोड़ है, हड्डियां मांस मिंज कलड़ी, इस तरह मन भी चारां दा मजमू है। विचार, सोचनी, चितवनी ते आहंग, इसनू कहिंदे ने मन बुद्ध चित आहंग। मन बुद्ध चित आहंग, इसनू शास्त्रकार चतुष्टा अंतःकरण भी कहिंदे ने। चतुष्टा अंतःकरण, चारां दा मजमूआ, चारां दा जोड़। जद अंदर विचारां दा प्रवाह चलदा है मन, जद मनुख सोचदा है कि किस विचार नू मैं अपनी जिंदगी दा अंग बनाना है, किस विचार नू तलांजलि देनी है, इस तरह जब सोचता है तो मन ही बुद्ध बन गया। बुद्ध जब मनुख किसे नू याद करता है या याद दे च बैठा है, चिंतन दे च बैठा है, वो ही मन बन गया चित्त। मन बुद्ध चित्त। एक चौथी शक्ति है आहंग। ये मेरे विचार ने, ये मैं सोच रहा, ये मैं याद कर रहा, ये आहंग भाव हर वक्त छाया रहिंदा है। ये चारां दा मजमूआ है साडा मन। मन बुद्ध चित आहंग, ये मन है। मन दा बदलना की है? विचारां दा बदल जाना, सोचनी दा बदल जाना, याद दा बदल जाना, हंकार दा बदल जाना। तुसी आखोगे हंकार बदल जांदा है? हां, एक निर्मल हंकार भी आउंदा है। पहले मनुख तन दा माण करदा है, धन दा माण करदा है, जोबन दा माण करदा है, प्रभुता दा माण करदा है, परिवार ते माण करदा है, जात ते माण करदा है, कुल ते माण करदा है। लेकिन जब हंकार बदल जांदा है तो ये रब ते माण करदा है, बाकी किसे ते माण नहीं करदा, गुरु ते माण करदा। तान मान दीबाण साचा नानक की प्रभटे। हे प्रभु, हे सच्चे, तू मेरा माण है, तू मेरा तान, मैनू हुण तेरे ते माण। तन ते माण है, धन ते माण है, जोबन ते माण है, प्रभता ते माण है, परिवार ते माण है, कुल ते माण है, जात ते माण है, इते महिला है, हंकारी है, यही लोकां कोल है। कोई जोबन दा माण करदा है, कोई प्रभता दा माण करदा है, कोई धन दा माण करदा है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज दा बड़ा सुंदर प्रमाण, जोबन धन प्रभता कै मद में अहनिस रहे दीवाना। दिन रात पागल होया फिरदा है। धन दा माण, जोबन दा माण, प्रभता दा माण। भगत भी मैरज करा निमाणे नहीं आउंदे, माण तो रहत नहीं आउंदे और निमाणे नहीं आउंदे। बड़ा भारी माण आउंदा है उन्हां कोल, किस्ते उस परमात्मा दे। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं आप जी दे सामने रखा। पातशाह कहिंदे ने, माण मांगो, ताण मांगो, धन लखमी सुत दे। हे प्रभु, निमाणे होके नहीं जीवना, निताणे होके नहीं जीवना। कुदरती गल है, निताणा निमाणा होंदा है। जो निताणा है, जिहदे कोल ताण नहीं, उहदे कोल माण कहदा। और जो निताणा है, निमाणा है, उह ते मरण तो पहले मर गया, उह ते कबर ते चला गया, उह ते चलदी फिरदी लाश है और कुछ भी नहीं। निताणी कौम निमाणी आउंदी है, निताणा मनुख निमाणा आउंदा है, निताणा देश निमाणा आउंदा है, उह मरण तो पहले मर गया आउंदा है। निताणे लई जगत विच कोई जगह नहीं। कमजोर कहिंदे उस लई कोई थां नहीं। ते जद किसे तरह दी भी कोई ताकत नहीं, ना धन दा जोर, ना जोबन दा जोर, ना कुल दा जोर, ना जात दा जोर, तो जोर किस दा? जोर हुण प्रभु दा। तान माण दीबाण साचा नानक की प्रभटे। हे प्रभु, हुण तू मेरा ताण है, इस वास्ते मैनू तेरे ते ही माण है।
परमात्मा निर्मल है, उसका माण भी निर्मल है, बाकी हंकार मैला है। विचार जब बदलते ने तो हुण मैं इस करा मनुख के विचारां विच है कि मनुख की सोचनी विच की है। अगर कह दईए विचारां दे बदलदिआं संसार बदलदा है, सोचनी दे बदलदिआं जिंदगी बदलदी है, चिंतन दे बदलदिआं यादां दे बदलदिआं ही सारी दुनिया बदलदी है, हंकार दे बदलदिआं ही सब कुछ बदलदा है। तो सवाल यह पैदा होंदा है मनुख दे विचारां विच की है, सोचनी विच की है, यादां विच की है। धार्मिक मनोचिंतक ऐसा कहिंदे ने कि मनुख दे विचारां विच, मनुख दी सोचनी विच और मनुख दे चिंतन विच काम है, लोभ है, अहंकार है और की है, कुछ भी नहीं। पढ़ो अपने विचारां नूं अंदर किहड़े पै विचार चलदे ने, पढ़ो अपनी सोचनी नूं सोचनी विच की है, और पढ़ो अपनियां यादां नूं यादां विच की है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे ने बड़ियां बड़ियां किताबां पढ़ लैंदा है अपने मन नूं नहीं पढ़दा। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पढ़े इयाना। बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लेना, बड़िया बड़िया किताबां पढ़ लेना, बहुत कुछ पढ़ लेना, पर मत्थे दे लेख नहीं पढ़ सकता, सिर दे लेख नहीं पढ़ता। तेरे सिर दे च की चल रहा है, तेरे दिमाग दे च की चल रहा है, तेरे मन दे च की चल रहा है, पढ़। और जिसनों अपना मन पढ़न की जाच आ जाए साधक, और जो अपने मन नो बदल देवे शुद्ध कर लेवे साधु, जो साधना दे लीन है मन नो समझण की कोशिश पिया करता है। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ते इत्थे तक कहिंदी है गुरु अर्जन देव जी महाराज, ब्रह्मा बिशन नारद मुन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। धार्मिक दुनिया दे ए अजीम देवते बड़े दार्शनिक सन, बड़े स्याणे सन, बड़िया शक्तियां दे मालक, पर जिस धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नूं आप मत्था टेक रहे हो, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं देखा। वो भी मन दियां गहराइयां नूं समझ ना सके ते मन दे हथों ठगा गया, ब्रह्मा ठगा गया। किस तरह ठगा गया? अपनी बच्ची दा रूप वेख के ही अपना मन मैला कर बैठा। पुराण कथावां जिसका अनुवाद करते ने भाई साहब भाई गुरुदास जी, चारे वेद वखाण दा चतुर्मुखी होए खरा सियाणा, लोकां नूं समझाएंदा वेख सुरस्ती रूप लुभाणा। ब्रह्मा जिहड़ी भुल ब्रह्मा करदा है, उही भुल विष्णु करदा है, उही भुल शंकर करदा है, उही भुल इंद्र करदा है, उही भुल नारद करदा है। कारण क्यों करदा है? मन दियां गहराइयां नूं समझण दे असमर्थ रह गए। ते मन नूं समझना किधरे बच्चियां दी खेड ना समझ लैणी। लोकी कहिंदे ना मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ। इंज कहना चाहिए गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। पहले किस तरह कर लैणगे, किवें कर लैणगे? जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं इंज कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके पाठ करो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और वो कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी समझ नहीं, इंज कहना चाहिए है पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे। मन दी एकाग्रता ते फल है। जिहड़े कहिंदे मन नूं एकाग्र करके कीर्तन करो, मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो, बिल्कुल गलत कहिंदे ने। और मैं फिर अर्ज करा उही कह रहे हैं जिन्हां नूं मन दी बिल्कुल समझ नहीं, कोई बोध नहीं, ओही कहिंदे ने मन नूं एकाग्र करके कीर्तन सुनो। नहीं, इंज कहना चाहिए कीर्तन सुनो ताकि मन एकाग्र होवे, पाठ करो ताकि मन एकाग्र होवे, गुरुद्वारे जाओ ताकि मन शुद्ध होवे। मन नूं शुद्ध करके गुरुद्वारे जाओ, बच्चियां दी खेल। और गल स्पष्ट हो गई, मन दी समझ नहीं, मन दा कोई पता नहीं। आम साधारण मनुखां दा ते कहना की धन गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, ब्रह्मा बिशन नारद मुनि सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। आम बंदे मन दे हथों ठगाए जाते ने, ब्रह्मा भी ठगा गया। किसे होर ने नहीं ठगया, मन ने ठग लिया बिशनु नो, मन ने ठग लिया शिव जी नो, मन ने ठग लिया इंद्र नो,
जो आम साधारण मनुख भूल कर देने इंद्र भी कर बैठा है। और हैरानगी कि गौतम ऋषि दी नार अहल्या अपने विचार अपने जज्बात नु काबू ना पांदा होया एक संत दी पत्नी नु भ्रष्ट करदा है। इंद्र गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दा फैसला गुरु ग्रंथ साहब जी इस इतिहास नु साडे सामने रखदे ने। गौतम नार अहल्या तिस देख इंद्र लुभाया सैस शरीर चहन भग उए तामन पछोताया। तो मैं अर्ज करा मनुख दे विचारां विच की है मनुख दी सोचनी विच की है मनुख दे चिंतन विच यादां विच की है मनुख दे विचारां विच काम है मनुख दे विचारां विच लोभ है मनुख दे विचारां विच अहंकार है। मैं दोवां दा नां नहीं लिया क्रोध ते मोह। पता है क्यों? धार्मिक दार्शनिक कहिंदे ने ये जो तीन ने काम लोभ अहंकार इन्हां दी अपनी बुनियाद है। क्रोध ते मोह इन्हां तिन्हां दी छाया है। क्रोध ते मोह दी अपनी कोई बुनियाद नहीं है इसकी अपनी कोई होंद नहीं है ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। काम दी छाया है मोह लोभ दी छाया है मोह हंकार दी छाया है मोह। हंकार दी छाया है क्रोध मोह दी छाया है क्रोध काम दी छाया है क्रोध। जिस तो लोभ दी पूर्ति हो जाए उसते मोह आ जाता है प्यारा लगता है चंगा लगता है जिड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा गुस्सा आउंदा। जिड़ा काम दी पूर्ति कर देवे उसते मोह आउंदा है प्यारा लगता है चंगा लगता है जिड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। और जिड़ा हंकार नू पट्ठे पा दे प्यारा लगता है चंगा लगता है जिड़ा कह देवे थोड़े जैसा कोई दानी नहीं थोड़े जैसा कोई ज्ञानी नहीं तुसी ना हो तो सेवा हो नहीं सकती तुसी ना हो तो गुरुद्वारे चल नहीं सकते। कुछ ते हंकारी ऐसे होंदे ने वो आप ही अपने मुंह च सब कुछ प्रगट करते ने कहते ज्ञानी जी असी ना होइए तो जलूस किवें निकलेगा असी ना होइए तो स्कूल के दरवाजे बंद हो जान असी ना होइए तो गुरुद्वारे का काम चल ही नहीं सकता। मेरा एक ही जवाब होंदा तू मर के वेख सब कुछ आंदा रहेगा। इत केती गई देख बाजे बजाए वही एक रैसी जो साचा खुदा है। कल तू ये आखेगा जो मैं ना वहां ते सूरज किवें चढ़ेगा मैं ना वहां ते दरियावां दे वेग किस तरह चलन गए मैं ना वहां ते हवावां किस तरह चलन गया। पर इसनू कौन दसे तू नहीं भी आवेगा तो सब कुछ होंदा रहेगा। एवें तेरा अहंकार फिजूल अहंकार फोका अहंकार। तो जिहड़ा अहंकार नू पट्ठे पा देवे उसते मोह आउंदा है चंगा लगता है प्यारा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। जिहड़ा लोभ दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है चंगा लगता है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। एकाग्रता बख्शनी तवज्जा जो काम दी पूर्ति कर देवे प्यारा लगता है उसते मोह आउंदा है। और जिहड़ा रोक खड़ी कर देवे उसते क्रोध आउंदा है। इस वास्ते सियाणे धार्मिक चिंतक ऐसा कहिंदे ने क्रोध ते मोह दा अपना कोई वजूद नहीं है अपनी कोई बुनियाद नहीं है अपनी कोई होंद नहीं है ये उन्हां तिन्हां दी छाया है। मन नूं समझणा है थोड़ा जिहा अंतरमुखी होना है ये भी मैं अर्ज करदे हां। और अंतरमुखी होए बिना कुछ समझ भी नहीं आएगी। तो अंतरमुखी ओ ही हो सकेगा जो सुनदा है। तो सुनना ही तो कठिन है बहुत कठिन है बहुत ही कठिन है। मस्जिदा ने मंदिर ने गुरुद्वारे ने साधना का थोड़ा थोड़ा अंतर है मंजिल एको ही है ठिकाणा एको है। साडे हिंदू वीर जाते ने मंदिरां दे दर्शन करने लई किसी देवते अवतार की मूर्ति दे सारी साधना अखां ते खड़ीए वेखण ते खड़ीए दर्शन ते खड़ीए दर्शन करने ने वेखना है अखां दे सामने जो कुछ होएगा अखां वेख लैणगियां सारी साधना दर्शना ते खड़ीए। अज एक मंदिर दी कोठड़ी विच भगवान नूं वेखीए फिर बाहर वेखीए फिर सारा संसार भगवान दा रूप दिखाई देवे साधना है वेखना है दर्शन करने ने। साडे मुसलमान भरा जांदे ने मस्जिद विच पढ़न लई नमाज
ساری سادنا پڑھن تے کھڑی ہے، قرآن دی تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، پڑھن تے کھڑی ہے، ویکھن نالوں تھوڑا جیا پڑھنا یہ واسطے اکاگرتا چاہیے ہے، تھوڑی جی سکھ جاندے نے گردوارے سنن لئی گرو کا شبد، ساری سادنا کنا تے کھڑی ہے، سنن تے کھڑی ہے، ویکھن نالوں پڑھنا اوکھا ہے اور پڑھن نالوں سننا اوکھا ہے، کٹھن ہے، اس چکر چنا پینا کہ اسی اتنے سارے بیٹھے ہاں سارے سن رہے ہیں، پتہ ہی نہیں دو چاراں تو زیادہ کوئی نہیں سن رہا، سب اپنے وچاراں نو سن رہے ہیں، سب اپنی سوچنی نو سن رہے ہیں، سب اپنی یاداں چ مرو اندر جو پرنے چل رہے ہیں سب انہاں نال جڑے ہیں، کٹھن ہے، اگر کوئی سنے تو صاحب کہنے نانک بھگتاں سدا وگاس، سنیے دکھ پاپ کا ناش، سندیاں ہی دکھ ناش ہو جاندے، سندیاں ہی پاپ ناش ہو جاندے، سندیاں ہی گرو کا شبد اندر پرویش کرے گا، سندیاں ہی گرو دی وچار اندر پرویش کرے گی، اندروں ہنکار نکلے گا، اندروں دکھ نکلن گے، اندروں سنتاپ نکلن گے، سننا ہی تے اوکھا ہے، اور سن اوہی سکے گا جس دا پورا دھیان اکاگر ہوے، ادھر بھٹکتا پیا ہے، ادھر بھٹکتا پیا ہے، ادھر ویکھ رہے ہے، ادھر ویکھ رہے تو سپشٹ ہے یہ دھیان بھی بھٹک رہا ہے، انہیں کی سننا ہے، سنن لئی دھیان دی پوری اکاگرتا چاہی دی ہے، ایک منک اچھی اچھی بول رہا ہوں دا ہے، دوسرا سن رہا ہوں دا ہے، تے سنن والا اچن چیت کہہ دیندا مترا یہ گل پھر آنکھ میں نہیں سنی، تو کیوں نہیں سنی، جد بولن والا اتنی اچھی اچھی بول رہا ہے تو کہندا میرا دھیان کسے ہور پاسے چلا گیا، بنا دھیان دی اکاگرتا تو سننا کٹھن ہے، اور بنا سنیا گرو دے شبد دا اندر پرویش ہونا کٹھن ہے، اور شبد دے اندر دے پرویش ہوئے بنا دکھاں دا باہر نکلنا بھی کٹھن ہے، دکھ تاں ہی باہر نکلن گے، سنتاپ باہر تاں ہی نکلن گے جس شبد اندر پرویش کرے گا، نانک بھگتاں سدا وگاس، سنیے دکھ پاپ کا ناس، سن کے ہی منک سدھ بن جاندا ہے، پیر بن جاندا ہے، ناتھ بن جاندا ہے، گینی بن جاندا ہے، دانی بن جاندا ہے، اتنا پاون ہو جاندا ہے کہ اٹھاٹھ تیرتھ بھی اس تو صدقے کیتے جا سکتے ہیں، سنیے اڑسٹھ کا اشنان، اتنا پاون ہو جاندا ہے، وہ تو اتنا پوتر ہو جاندا ہے جی کدھر سنے، بھوجن دی برکی منہ دے راہی اندر پرویش کر دی ہے، وہ پچ کے منج بن دیے، خون بن دیے، ماس بن دیے، شریر دی شکتی بن دیے، توانائی بن دیے، اندریاں دا بل بن دیے، گرو دا شبد کنا دے راہی اندر پرویش کرتا ہے، یہی سمادھی بنتا ہے، یہی آنند بنتا ہے، یہی دیوی گن بنتا ہے، یہی پرم شکتی بنتا ہے، یہی روحانی طاقت بنتا ہے، پر شبد تے کنا دے راہی اندر پرویش کرے گا، اور ادوں پرویش کرے گا جد کوئی سنے گا، اور سنے گا وہی جس دا دھیان پورا اکاگر، نہیں تے کون سنتا ہے، شوقیا لوکی اپنے گھر دے وچ بھی اکھنڈ پاٹھ رکھا لیندے نے، پر جس کمرے دے وچ رکھاندے نے اتھے وڑنا ہی بھل جاندے نے، کدھر سننا نہ پے جائے، کون سنتا ہے، کٹھن ہے، منک پتر نو سن سکدا ہے، متر نو سن سکدا ہے، پتنی نو سن سکدا ہے، پتی نو سن سکدا ہے، گرو نو سننا اوکھا ہے، کٹھن ہے، کارن گرو دی گل، گرو دی وچار سڈے وچاراں نال تال مل نہیں کھاندی، سڈے وچاراں چ کام، گرو دے وچاراں چ رام، سڈے وچاراں چ کرودھ، گرو دے وچاراں چ دیا، سڈے وچاراں چ ہنکار، گرو دے وچاراں چ نرنکار، نرمانتا ونمرتا تال مل نہیں بیٹھتا، واجے دی سر ایک پاسے جائے، تبلے دی سر ایک پاسے جائے، کدن تال مل نہیں بیٹھے، تال میل نہیں بیٹھے، تال تبلا سر تال دوہاں دا میل تے بیٹھنا چاہیے، سر کسے پاسے جا رہی ہے، تال کسے پاسے جا رہی ہے، گرو دے وچار کچھ اور، سڈے وچار کچھ اور، تال میل نہیں بیٹھتے، اور کہنے نے جتھے تال میل بیٹھ جائے رس بنتا بھی اتھے ہی ہے، ورنہ رس نہیں بنتا، اور کسے دن کیرتن سندیا کسے نو رس آ گیا ہے، تال میل بیٹھ گیا، اول تے میں دیکھے ہے کیرتن دا رس تے کسے نو ورلے نو ہی آمدہ ہے، لوگ سوراں دے آوازاں دے اگلے دے رنگ روپے چی یا ویرت دیاں ساکھیاں چی پھس کے رہ جاندے ہیں، جنہاں دا اتہاس نال بھی کوئی مطلب نہیں، سچائی نال بھی کوئی مطلب نہیں، میں تے اتھے تک دیکھے اتنی نیوی لوکاں دی سروت، یہ کس طرح گرو نو سننگے، یہ کس طرح گربانی نو سننگے، یہ باونی
बिरलो विचार सी जेको गुरमुख होए। सच दे विचार फोकियां साखियां नहीं, और जेड़ी साखी गुरु ग्रंथ साहब दी विचारधारा ते पूरी नहीं उतरदी उसकी सच्चाई है किथे, हकीकत है किथे। खैर मुख्तसर जो मैं अर्ज करा, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे विचारां विच निरंकार है, दैवी गुण ने, ईश्वरी गुण ने, ये सुन के ही अंदर प्रवेश कर देने। शब्द अंदर प्रवेश करेगा, समाधि बनेगा, दैवी गुण बनेगा, और समझ आ जाएगी उस परिपूर्ण परमात्मा दी, अकाल पुरख दी। किस अकाल पुरख दी? जिदे बारे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, अनेक हैं फिर एक हैं। जो एक होंदा होया अनेक है, ते अनेक होंदा होया एक है। इत पहली हो गई, वो अनेक भी है, वो एक भी है, वो एक भी है, वो अनेक भी है। हाँ, वो आकार रहत है, वो आकार वाला भी है, वो सरगुण है, वो निर्गुण है, निर्गुण आप सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। वो निर्गुण रूप दे एक है, वो सरगुण रूप दे अनेक है। वो एक तो अनेक है और अनेक तो एक है। कदी जगत दे बगौर मुताला करके देखना, सब कुछ अनेक है, एक कुछ भी नहीं है। मनुख अगर बारों कुछ एकता लेना चाहे तो हो नहीं सकती। आप इतने सारे बैठे हो, सब वख वख हो, मेरे करते एक खेल रचाया, कोई न किसी ही जेहा उपाया, एक जैसा दूसरा नहीं है। लखां मनुखी बच्चे रोज जन्म ले रहे ने, नवा रूप लेके आंदे, नवी आवाज, नवी चाल, और गजब दी गल, नवी ही उंगलियां दी छाप। आप इतने सारे बैठे हो, हर एक दे फिंगरप्रिंट अलग अलग ने, हर एक दे अंगूठे दी छाप अलग अलग। एक दा अंगूठा दूजे नाल मेल नहीं खांदा। इस वक्त जमीन देते कोई 5 अरब दे करीब मनुख ने, इसका मतलब है 5000 अरब अंगूठे अलग अलग ने, और जितने मनुख हो गुजरे ने सब दे अलग अलग, जितने नवे आ रहे ने सब दे अलग अलग। आवाज अलग, चाल ढाल, अगर रंग रूप अलग, एक जैसा दूसरा नहीं है। मनुख की गल छड़ो, एक पहाड़ जैसा दूसरा पहाड़ नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है। दरख्त की गल छड़ो, एक पत्ते जैसा दूसरा पत्ता नहीं है, एक फुल जैसा दूसरा फुल नहीं है। एक दरख्त नूं जे 1000 फल लगे ने, 10000 फल लगे ने, एक फल जैसा दूसरा फल नहीं है। इस चक्कर च ना पैना कि 1000 अंब एक दरख्त नूं लगे ने, सारे एको दरख्त दे फल ने, तो एक जैसे ने कदे ही नहीं। रंग दे, रूप दे, आकार दे, वजन दे, स्वाद दे, लाजमी फर्क होगा। ये गल वखरी है कि वह फर्क साड़ी पकड़ दे आवे भावे ना आवे, वह फर्क साडे तौल दे आवे भावे ना आवे, पर फर्क है। एक जैसा दूसरा परमात्मा बनांदा ही नहीं, पुनरुक्त नहीं करता और रिपीट नहीं करता। कहिंदे ने परमात्मा विच रिपीटेशन नहीं है, वो कुछ भी रिपीट नहीं करता। और जिस दिन एक जैसा वो दूसरा बनाने लग पाया, तो समझ लेना रब भी मुक गया, खत्म हो गया। ऐसा नहीं होगा। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, और एक सूरज नहीं है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कई कोट ससियर सूर निखत्र, कई करोड़ा सूरज ने, कई करोड़ा चंद्रमा ने, कोई एक है। और आज विज्ञान ने इसकी तस्दीक कर देती है कि गालबन 50 अरब सूरज साड़ी पकड़ दे, साड़ी समझ दे आ गए ने इतने। इस तो अगां भी पसारा हो सकता है। जिस तरह साड़ी उम्र है, सूरजां दी भी उम्र है। कुछ सूरज बचपन दे दौर दे ने, कुछ जवान हो चुके ने, कुछ बुढ़े ने, कुछ खत्म होने वाले ने, मिटन वाले ने। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। सूरज घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। चंद्रमा घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। धरती घट रही है, एक दिन मिट जाएगी। मनुख घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। सब कुछ बदता है, घटता है, मिटता है। ये तिने नियम हर एक ते लागू ने, सूरज चंद तारियां ते भी लागू ने। और विज्ञान ऐसा कह रहा है कि एक सूरज, ये सूरज जिस दे थले असी जी रहे हैं, ते अपनी जवानी हंडा चुके है, बुढ़ा हो गया। 40 लख टन वजन 1 सैकंड दे चिस्ता घट रहा है। घटंत दीपं घटंत रूपं घटंत रव सस निखत्र गगनं। गुरु अर्जन देव जी महाराज ये घट रहे है, एक दिन मिट जाएगा। इस दे मिटन नूं ही महापरले कहंदे ने।
एक ब्राह्मण दी परले, एक ब्राह्मण दा खात्मा। बुढ़े सूरज दे थले असी जी रहे हैं, भावे अरबा खरबा इहदी साल उम्र है, लेकिन उम्र है। हर चीज वधदी है, घटदी है, मिटदी है। एक सूरज जैसा दूसरा सूरज नहीं है, एक चंद्रमा जैसा दूसरा चंद्रमा नहीं है, एक मनुख जैसा दूसरा मनुख नहीं है, एक दरख्त जैसा दूसरा दरख्त नहीं है, एक नदी जैसी दूसरी नदी नहीं है। परमात्मा रिपीट नहीं करता, पुनरुक्ति नहीं करता, दोहरांदा नहीं है। और जिस दिन परमात्मा दौरान लग पाए तो समझ लेना परमात्मा भी मुक गया है। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, साहिब मेरा नी

निधान है, अनेक है, फिर एक है। तू अनेक होंदा होया एक है और तू एक होंदा होया अनेक है, ऐसा क्यों कीता है परमात्मा ने? वो एक तो अनेक क्यों होया है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का इस संबंधी जवाब कलगीधर पातशाह का। महाराज कहिंदे ने एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। अनेकता उस एक दा खेल है, तमाशा है। खेल या तो बच्चे खेडते ने खेल या परमात्मा खेडता है, बाकी खेल नहीं है। जिस दे च जित होवे जिस दे च हार होवे वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिस दे च नफा होवे जिस दे च नुकसान होवे वो खेल नहीं है, वो ते धंधा है। मनुखी जगत दे सब तो वड़ियां खेलां ओलंपिक मेरी दृष्टि वो भी एक जंग है, वो भी एक धंधा है, खेल नहीं है। जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जांदे ने कहिंदे फलाना मुल्क हार गया है, फलाना मुल्क जीत गया है, ये जंग है या कि खेल है? और जिस मुल्क दे खिलाड़ी हार जांदे ने सोगवार होके आंदे ने, रोंदे हुए आंदे ने। और जिस मुल्क दे खिलाड़ी जीत जान नचदे हुए आंदे ने, मुल्क दे उनां दा स्वागत आंदा है, उन्हां नूं इनाम मिलते हैं, जैसे किसी मुल्क नूं जीत के आए ने और वाकई नाम भी लिया जाता है, फलाना मुल्क हार गया फलाना जीत गया। तो ये खेल है कि जंग है? ये खेल है कि धंधा है? ये खेल नहीं है। इसनूं मेरी आत्मा ने कतई खेल नहीं मनिया, कतई खेल नहीं। जिस दे च जित है जिस दे च हार है, जिस दे च हार दी घृणा होवे, जिस दे च हार दी बेइज्जती होवे, ते जिस दे च जित दा तकब्बुर होवे, उन्हों खेल आखण की की लोड़ है? वो खेल नहीं है, वो जंग है। जिदे च नुकसान का दुख होवे, जिदे च नफे की खुशी होवे, उन्हों खेल आखण की लोड़ की है? ये तो धंधा है। खेल बच्चे खेडते हैं, खेल परमात्मा खेडता है। दरिया के कंडे ते सागर के तट ते बच्चे खेल पे खेडते हैं, रेत के महल खड़े कर रहे हैं, बड़ी मेहनत नाल, बड़ी लगन नाल, बड़ी एकाग्रता दे नाल। तो क्या इन्हों बच्चों ने इन्हां महलां दे च रहना है जो इतनी मेहनत नाल पै बनांदे ने, इतनी एकाग्रता नाल बना रहे ने? नहीं, खेल है, पर बड़ी लगन नाल, बड़ी मेहनत नाल ये महल खड़े कर रहे ने। महल बन गए ने, इधरों सूरज डुबण वाला है, शाम हो गई है, घर दी याद आई है। हसदियां हसदियां रेत दे महल खड़े कीते सन, हसदियां हसदियां हुण तोड़ रहे ने। बड़ी एकाग्रता नाल बनाए सन, बड़ी एकाग्रता दे नाल तोड़ रहे ने। जब बनाने लगे सन खुश हसते हसते हैं, अज मिटाने लगे ने खुश हसते हसते हैं। खेल है, तंदा नहीं है, जंग नहीं है। बनाना भी खेल सी, मिटाना भी खेल सी, आवन जान एक खेल बनाया, आ गया कारी की नहीं माया। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने परमात्मा की दुनिया च भी ओदी दृष्टि जी सब कुछ खेल, जमना एक खेल, मरना एक खेल, नफा एक खेल, नुकसान एक खेल, जवानी एक खेल, बुढ़ेपा एक खेल। क्योंकि जवानी बुढ़ेपे च बदल जाती है, जन्म मरण दे च बदल जाता है, नफे नुकसान दे च बदल जाते हैं, इज्जत बेइज्जती दे च बदल जाती है, जिंदाबाद दे नारे मुर्दाबाद दे च बदल जाते हैं। खेल तमाशा, सुंदरता कुरूपता दे च बदल जाती है, हासे रोणिया दे च बदल जाते हैं। फूल खिलता है मुरझाने का तखयल लेकर, जिसे हंसता हुआ पाओगे वो परेशान होगा। आसियां दे थले परेशानियां छुपियां पईयां ने, दुख संताप जो है छुपे पए ने, जन्म दे थले मरण छुपिया पे है। खेल तमाशा, बनाण लगिया प्रसन्नता है परमात्मा नूं, बिठाण लगिया भी प्रसन्नता है। जद बनांदा है तो एक तो अनेक हो जांदा है, जद मिटांदा है तो अनेक तो एक हो जांदा है। खेल संकोचे तो नानक एक है, जैसे खेल नूं संकोचदा है एक, तो जद खेल खेलण लगदा है अनेक। एक मूरत अनेक दर्शन, कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। इस अनेकता दे जिड़ा एक नू वेख लवे, एक नू समझ लवे, वो पवित्र है। उसनू किसे नाल घिरना नहीं होवेगी, किसे मुल्क नाल, किसे जात नाल, किसे व्यक्ति नाल, किसे कौम नाल, किसे धार्मिक मंदिर नाल। मस्जिद नू वेख के भी उस दे अंदर झरनाट वज जाएगी, मंदिर नू वेख के भी उसके अंदर खुशियां जागनगियां। गुरुद्वारे ते चर्च दे कोलो लंघे आई उहदे अंदर अध्यात्मक तरंगा पैदा होणगियां, भेद ते मिट गए, उहनू दिस पिया अनेकता दे अंदर एक है।

मेरे घर मुंडा होवे भावे ना होवे दूजे दा मरना चाहिदा। मैनू इज्जत मिले भावे ना मिले दूजे दी बेइज्जती होनी चाहिदी। मेरा नफा होवे भावे ना होवे दूजे दा नुकसान ते होना ही चाहिदा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ऐसा मनुख अपने लिए खुद दोजक बनांदा है, अपने लिए खुद नरक बनांदा है। सतगुरु कहिंदे ने हिरदे च सारियां लई भलाई दा जज्बा पैदा होया है। मेरे ख्याल रूए जमीन ते इको एक स्थान है गुरु नानक दा घर, जिथे सारियां दे भले दी अरदास कीती जांदी है। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबद हद हो गई। इको ही मंदिर है इस तरह का रूहे जमीन ते। बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मवे पाई, सबको मीत हम आपन कीना सारे मेरे मित्र ने। हुण मैं अर्ज करा रामायण दे करता श्री राम दे महान भगत तुलसी। वो कहिंदे ने मित्रता ते उत्थे हो सकदी जिथे छे गुण आपस दे च मेल खान, उंज नहीं हो सकदी। गुरु अंगद देव जी दा एक बड़ा कीमती श्लोक है, नाल इयाने दोस्ती वड्डा रोसों न्यो, पानी अंदर लीक द्यो तिसदा थाओ न थ्यो। दोस्ती बराबरी दे तल ते आउंदी है, मित्रता बराबरी दे तल ते आउंदी है। 70 साल दा बुढ़ा ते 5 साल दा बच्चा दोस्ती नहीं हो सकती। दादे दे पोतरे दा संबंध ते हो सकदा है मोह ममता दा, मित्रता नहीं होवेगी, दोस्ती नहीं होवेगी। दोस्ती लई बराबरी दा दल चाहिदा है, मित्रता हमेशा बराबरी दे तल ते होंदी। नाल इयाने दोस्ती वड्डा रोस, अपने तो वड्डे नाल दोस्ती नहीं हो सकती। एक 5 साल दे बच्चे दी 80 साल दे बुढ़े नाल की खाक दोस्ती होवेगी, किस तरह होवेगी। 70 साल का बिरध 5 साल के बच्चे नाल की दोस्ती पावेगा। मासूम बच्चा है, मां बाप उस नाल तुतला के बोलते हैं, क्योंकि बच्चा अजे तुतला के बोलता है, ठीक ढंग नाल बोलता नहीं। बच्चे दे तल ते आके ही बच्चे नाल गल करनी पैंदी है, ताही संबंध जोड़दे ने उंज नहीं। गुरु अंगद देव जी महाराज कहिंदे ने मित्रता बराबरी दे तल ते आउंदी है, छोटे ते वड्डे दे च नहीं आउंदी। कमजोर ते ताकतवर दी दोस्ती नहीं आउंदी, मूर्ख ते स्याणे दी दोस्ती नहीं आउंदी, लोभी ते संतोखी दी दोस्ती नहीं आउंदी, क्रोधी ते शांतमई दी दोस्ती नहीं आउंदी। संबंध हो सकदे ने, दोस्ती लई बराबरी दा तल चाहिदा है। दो संतोखियां दी दोस्ती हो सकदी है, दो श्रद्धालुआं दी दोस्ती हो सकदी है, दो सियाणियां दी दोस्ती हो सकदी। एक मूर एक सियाणा, एक क्रोधी एक शांतमई, किस तरह दोस्ती होवेगी। दोस्ती लई मित्रता लई बराबरी दा तल चाहिदा है, लेकिन सारियां नूं अपना बनाना है। इहदे वास्ते नहीं हुण बराबरी दा तल है भावें नहीं है, यह कोई गल नहीं। एक बच्चा बराबरी नहीं कर सकदा एक 60 साल दे बुजुर्ग दी, किस तरह बराबरी करेगा। शरीरक बल करके भी बराबर नहीं कर सकता, दिमागी सोच करके भी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ममता दा मारा होया दादा कहिंदा मेरा अपना है, मेरा अपना है, उहदे नाल प्यार करता है, मेरा अपना है। यह गल वखरी है, मित्रता दोस्ती बराबरी दे तल ते हुंदी है, पर अपनंत ते सारियां नाल कीती जा सकती है। सबको उम्मीद हम आपन की ना, सारियां दे नाल मैं अपनंत जोड़ लेंगे। कवि तुलसी रामायण दे करता कहिंदे ने मित्रता उत्थे ही आउंदी है जिथे छे गुण आपस दे च मेल खा जान। मैं पढ़ के बड़ा हैरान होया सी, और वाकई बहुत सूझमान ने तुलसी, बड़ियां गहरियां गल्लां उन्होंने किधरे किधरे लिखियां ने। वो कहिंदे ने आसा इष्ट उपासना खान पान पहरान, खट लखन प्रगटे जहां तह मित्रता जान। छे गल

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छुड़ावो। एहे पीतर ते इनको डारो आपन निकट बुलावो। अपनी भेद आप जनावो हर जन मंगल गावो। बिशर नाही कब हूँ ही ये ते

0: राष्ट्रपति
1: पूरे गुरु का सुन उपदेश
0: पार ब्रह्म निकट कर पेख
1: सा सा सिमरहु गोविंद
0: मन अंतर की उतरे चिंद
1: आस्तनित त्याग हो तरंग
0: संत जना के तुहर मन मंग
1: आप छोड़ बेनती करहु
0: साथ संग अग्न सागर तरहु
1: हर धन के भर ले हो भंडार
0: नानक गुरपुरे नमस्कार
1: खेम कुशल सहज आनंद
0: साथ संग पर परमानंद
1: नरक निवार उधारो जियो
0: गुण गोविंद अमृत रस पियो
1: चित चितव हो नारायण एक
0: एक रूप जाके रंग अनेक
1: गोपाल दमोदर दीन दयाल
0: दुख भंजन पूर्ण कृपाल
1: सिमर सिमर नाम बारंबार
0: नानक जी का एह आधार
1: उत्तम श्लोक साध के बचन
0: अमलीक लाल एह रतन
1: संत कमाप्त हो उदहार
0: आप तरह लोक निस्तार
1: सफल जीवन सफलता का संग
0: जाके मन लागा हर रंग
1: जय जय शब्द अनाहत बाजय
0: सुन सुन अंत करे प्रभु गाजय
1: रखे गोपाल महांत कह माथे
0: नानक उदरे तिन कह साथे
1: शरण जोग सुन सरनी आए
0: कर कृपा प्रभु आप मलाए
1: मिट गए बैर भय सब रीन
0: अमृत नाम साध संग लैन
1: सुप्रसन्न भय गुरुदेव
0: पूर्ण होई सेवक की सेव
1: काल जंजाल विकार ते रहते
0: राम नाम सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रभु धारी
0: नानक रहि खेप हमारी
1: प्राप्ति उस्तत करो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनी सहज गोविंद गुण नाम
0: जिस मन बसे सहोत निधान
1: सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए
0: प्रधान पुरख प्रगट सब लोए
1: सब ते ऊच पाए स्थान
0: लहर न होवे आवन जान
1: हर तन खाट चले जन सोए
0: नानक जिसे प्राप्त होए
1: खेम शांत रित नव निध
0: बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध
1: विद्या तप जोग प्रभु ध्यान
0: ज्ञान श्रेष्ठी उत्तम स्नान
1: चार पदार्थ कमल प्रकाश
0: सबके मत सकल ते उदास
1: सुंदर चतुर तत् का बेता
0: समदर्शी एक दृष्टेता
1: ये फल तिस जन के मुख पनी
0: गुरु नानक नाम वचन मन सुने
1: केहो निधान जपै मन कोई
0: सब जुग मैता की गत होए
1: गुण गोविंद नाम धुन बाणी
0: समर्थ शास्त्र वेद बखाणी
1: सकल मतांत केवल हर नाम
0: गोविंद भगत के मन बसराम
1: ओट अपराध साध संग मिटै
0: संत कृपा ते जमते छुटै
1: जाके मस्तक कर्म प्रभ पाए
0: साध शरण नानक ते आए
1: जिस मन बसै सुनै लाई प्रीत
0: जिस जन आवे हर प्रभ चीत
1: जन्म मरण ता का दुख निवारै
0: दुर्लभ दे तत्काल उधार
1: निर्मल शोभा अमृत ता की बानी
0: एक नाम मन माहे समानी
1: दुख रोग बिन से भय भरम
0: साध नाम निर्मलता के कर्म
1: सबते ऊच ता की शोभा बनी
0: नानक एह गुण नाम सुखमनी
1: सबते

0: सच बुझाया सच बुझाया भाई।
1: पौड़ी नदर करे जे अपनी तो नदर सतगुरु पाया, यह जियो बहुत जन भ्रमिया ता सतगुरु शब्द सुनाया। सतगुरु जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया, सतगुरु मिलियो सच पाया जिन विचों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया।
0: आसा महला चौथा।

दे मंगेशे सगुण सो परे संसार चोरा जारा ते कुड़िया रखा रा बाबे कार एक होंदा खा चले जाओ तिना भी कई कार जलता जिया पुरिया।

पौड़े बिन सतगुरु कि ना पायो, बिन सतगुरु कि ना पाया। सतगुरु विच आप रखे उनकर प्रगटाक सुनाया। सतगुरु मिल गए सदा मुक्त है जिन विच हो चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिंह चितलाया। जग जीवन दाता पाया, जग जीवन दाता पाया।

पौड़ी सेव की दिशन तो खी जिन्हें सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखे उन कर सो के तो धर्म कमाया कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड्डा पाया वड्याई वड्डा पाया।

0: पर गड्डी लदिए पर पर परिए साथ पर बेड़ी पाइए पर गड़िए खात पढ़िए है जेते वर्ष वर्ष पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आर जा पढ़िए जेते सास नानक लेखे की गल और हो में चखना चा
1: पहला लिखल पढ़िया ते ता कड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

0: काल पूर्व वर्त्या कल काल बेताल बियो बीज पतले के अब क्यों कुबेदार जे को तो कुबे रुति हुरत होए नान पाहे बारा को रे रंग ना सोए पैविच खुम चढ़ाइए सरुपतन होए नान पक्ति जे रपे पूरे सोए ना कोए
1: महला पहला लब पाप धोए राजा मेहता कूड़ हुआ शिकदार।

0: का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजर संजय करे प्यार धर्मी धर्म करेगा वा वह मंगे मुख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने है षड बह है करबार सबको पूरा आपे होवे कठिन कोई आखे पत प्रवण पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे
1: महला ज्ञान का सच्चा वेखे सोए सबनी चारा मारियां करता करे सोए अगे जात न जोर है।

0: नील बस्त्र ले कपड़े पहरे तुरक पुठानी अमलकिया
1: चारे वेद हो सुचार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाप कर नी।

पौड़ सतगुरु वटों वारिया जित मेरे खसम संभालिया जिनका उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन नेत्री जगत ने हालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहता है।

ओडिशा महोदया कृपा करता सही कार कराए सी सौ सेवक सेवा करे जिसनों हुक्म बनाए सी हुक्म ने होवे प्रमाण तक मैं

कोठे मंडप माणिया लाए बैठे कर पछाड़िया चीज करन मन भावदे हर बुजर नाही हारिया कर फरमाइश खाया वेख मैं।

महला पहला जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए गोए ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए पहला पानी जीव हज थरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखिए।

सत्र सबै अवलोक इच्छा पाएंगे। मानव इंद्र गजेंद्र आदि पौ जाऊन ते लोक राज करेंगे। कोट स्नान गजाज गजान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महेश्वर विष्णु सती पात अंत फसे जम फास परेंगे। जे नार श्रीपद के प्रास है पाग ते नर फेर न देह तरेंगे। कहा भयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहो बाक ध्यान लगायो। नात फिरो लिए सात समुद्र लोग गयो पर लोग आयो। बास कियो

एक ना मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक ना जानियो श्री असपान।

मन चंचल चतुराई किनै न पाया, माया ता मोहनी तना कीती जिन ठगौली पाइया। कुरबान कीता तिसै विटहो, जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किनै न पाया।

इस जग में आए कै या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन ने वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक एहो शरीर प्रवान होवा जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन अवर न देखो कोई हर बिन अवर न देखो कोई नजरी हर निहालिया एहो वेस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नजरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर न कोई कह नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिया देव दृष्ट होई ए श्रवण हो मेरे हो साचा सुनने नो पठाए साचा सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनहु सत बाणी जिद सुनी मन तन हरिया होवा रसना रस समाणी सच अलख विडाणी ताकि गात कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र होवा साचा सुनने नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पवन ना उन द्वारे प्रगट की दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए पावनी एक ना दसवा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाओ नव निध तिसदा अंत न जाई पाया कह नानक हर प्यार जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया एहो साचा सोहिला साचा घर गावहो गावहो ता सोहिला घर साचै जिथे सदा सच ध्यावहे सचो ध्यावहे जात दुभावहे गुरमुख जना बुझावहे एहो सच सभना का खसम है जिस बगसे सोजन पावहे कह नानक सच सोहिला सचै घर गावे अनद सुनहु वड भागी हो सगल।

गुर रामदास राखा हो सरनाई, सोका हो टल गुर सेविया, अहनस सहज सुभाई। दर्शन

कि जैसा कर्म वैसी प्रलब्ध, इसे बीच जो दुख सुख निकलन गए और उसका विधान भी अटल, उसका नियम भी अटल। ये नहीं अगर वो फैसले बदलता है, नियम बदलता है, तो फिर उसके फैसले कमजोर ने, उसका कोई भी विधान अटल नहीं है, नेचल नहीं है। फिर ना परमात्मा नेचल है, उदे नेचल होने का सबूत कितों मिलता है, उदा नियम नेचल है। भारत का जो राष्ट्रीय विधान है ना, जिस दे मुताबक मुल्क नु चलाया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन, इस दे विच गालबन 150 तो भी ज्यादा दफा तरमीम हो चुकी है, संशोधन हो चुका है, अमेंडमेंट हो चुकी है, 150 तो भी वध। जब जब देखा गया विधान ये मुताबक देश नु चलाना औखा है, तब्दीली ये मुताबक देश नु चलाना औखा है, फिर तब्दीली। इसका मतलब 150 दफा पहले हो ही है। जी पहले उस विधान नु सही मन के देश नु चलाया जाता रहा, तो साल दो साल बाद दस साल बाद पता चलिया नहीं ये गलत है, संशोधन करो। तो की पता हुण भी जिस ढंग नाल चला रहे हो ये भी कोई सही है, इहदे च भी संशोधन करना पै, और कितनी दफा करना पै, 150 दफा तो कर चुके। क्या परमात्मा भी अपने विधान विच संशोधन करता है, तरमीम करता है? अगर तरमीम करता है तो यह मतलब वो कोल भुलां होंदियां ने, गलतियां होंदियां ने, उहदा नियम भी अटल नहीं है, उहदा विधान भी अटल नहीं है, फिर उन्हों भी ठीक करना पैंदा है, उन्हों भी अपने विधान की सुधाई करनी पैंदी है, और उन्हों भी सोचना पैंदा है कि इहदे मुताबक जगत नूं चलाना औखा है, और इहदे मुताबक जगत नूं पैदा करना औखा है। मैं अपने विधान विच जो है तब्दीली करा नहीं, सच्चा आप सच्चा दरबार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, करमे करमे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, परमात्मा सच्चा है, उदा नियम सच्चा है, उदा दरबार अटल है, उदे च कोई तरमीम नहीं, उदे कोई संशोधन नहीं। करमा दी विचार आउंदी है, उसके दरबार विच किस ढंग नाल आउंदी है, ये लंबे चौड़े सिद्धांतक नुकते मैं थोड़े सामने कल फिर रखांगा, क्योंकि घड़ी तो अपनी चाल नाल चलती है, तो कल की तरह मैं गुस्ताखी ना करा, क्योंकि पिछे जथियां ने कीर्तन भी करना होंदा है, और महापुरुखों दी इत्थे विचार आउंदियां ने, इतनी जो है प्रवान करनी है। दास ने अगे जाके 7:45 गुरुद्वारा सरी दे जो है हाजरी भरनी है, उत्थे जो लड़ीवार मजमून चल रहा उसनु उत्थे तोरांगे। ये मैं इस वास्ते थोड़े सामने जो है विचार रखी, क्योंकि बहुत सारे दे इस ढंग के प्रश्न सन, ये प्रश्न अपने आप विच इतना वड्डा है, इतना वड्डा है, घट तो घट मेरी छोटी जी मत के मुताबिक 15 दिन ते मंगदा है इनू निखेड़न लई। ते एक दो दिन विच ही दास ने निखेड़ा करना है, भावें इस संबंध विच गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सैकड़े शब्द ने, कलगीधर पातशाह के बहुत सारे वाक ने, भाई गुरदास जी ने इस उत्ते बहुत वड्डी मगजमारी की है, और नंद लाल ने भी अपनी रायां पेश कीतियां ने। तुच्छ बुद्धि अनुसार समय की गति के मुताबिक जितना हो सकया थोड़े सामने रखांगा। पंक्ति है मूल, करमे करमे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार, मेरे दुखां लई कोई दोषी नहीं, मेरे दुखां लई मैं दोषी हाँ। दद्दा दोष न देऊ काहूं, दोष करमा अपणिआ, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजे अवर जना। समाप्ति। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

कि ना के बाहर निकला है, हाथी तैर रहे, पहाड़ वर्गा शरीर तैर रहे, हाथी तैर रहे ने, गौं तैर दिया ने, घोड़े तैर रहे ने, मज्जा तैर दिया ने, कुत्ते तैर रहे ने, शेर तैर रहे ने, चीते तैर रहे ने, मनुख डुबदे ने, बंदा डुबदा, सिर्फ मनुख डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? मज्जा ते तैर दिया ने, कोड़े ते तैर दे ने, हाथी ते तैर दे ने, गौं ते तैर दिया ने, कुत्ते भी तैर दे ने, बंदा डुबदा। क्या पानी दा मनुखा नाल वैर है? नहीं, मनुख भी जिंदा ही डुबदा है, मुर्दे ते तैर दे ने, तैर दे, मुर्दा ते तैर दे। यूपी दे अंदर मध्य भारत दे चे सनातन मत दे कोई हिंदू संत अगर चलाना कर जांदा है, देही छड़ जांदा है, उन्हों जल प्रवाह कर दें, दास संस्कार नहीं कर दें, जल प्रवाह कर दें। पर जब जल प्रवाह कर दें ते मन मन दो दो मन दे नाल पत्थर बन दे, क्यों? लाश तैरन लग पैंदी, हालांकि लाश जिंदा मनुख नालों भारी हो जाती है, वजन बढ़ जाता है, लेकिन तैरती है। हैरानगी है, जिंदा डुबदे ने, मुर्दे तैरदे। पानी दा मनुख नाल भी वैर नहीं, अगर मनुख नाल वैर है तो फिर मुर्दे भी डुबने चाहिए, मुर्दा तो नहीं डुबदा। जीव दा मनुख क्यों डुबदा है? ये अपना बैलेंस बिगाड़ बैठता है, तवाजन खो बैठता है, संतुलन गवा बैठता है, ता डुबदा है। लोग इसका तवाजन डामाडोल कर देता है, सीमा तो वधिया होया अहंकार इसका बैलेंस बिगाड़ देता है, सीमा तो वधी हुई वासना इसका संतुलन डामाडोल कर दे, डुब जाता है। हम दे खाते डुबे आया, ये डुब गए। डुबे की पहचान की होगी? उदा नितनेम डुब गया होगा, नहीं करता होगा। तो रहत वैद डुब गई होगी, अमृत वेला डुब गया होगा, गुरु भक्ति डुब गई होगी, शील संयम डुब गया होगा, दया विशालता सम दृष्टि डुबी हुई होगी। हम देखते डुबे, महाराज कहते मैं देखदा डुबे हुए, दुनिया डुबी हुई है, गर्क हुई है। डुबे की पहचान की है? उदे कोल नितनेम नहीं होगा, अमृत वेला नहीं होगा, जप तप नहीं होगा, शील संजम नहीं होगा, दैवी गुण नहीं होंगे, डुबे होगा, गर्क होया होगा। कदी कदाई कोई कद मनुख अपना तवाजन अपना बैलेंस ठीक रखता है, डुबदा नहीं, उसे नु असी कहने निर्लेप है, कमल की तरह पानी वधदा है, कमल होर उपर उठता है। धन घर दे च वध रहा है, डुबदा नहीं पिया, प्रभता वध रही है, डुबदा नहीं पिया। नहीं तो कोई प्रभता च डुबे हुए ने, कोई धन संपदा दे डुबे हुए ने, कोई रूप रंग दे डुबे हुए। हम दे खांते हैं डुबे, महाराज कहते मैं देखदा दुनिया ते डुबी पई है। धार्मिक जीवन ते कुछ गुणा देखड़ा है, सूरज अपना नूर वंडदा है संसार विच किरणा दे रहे, परमात्मा दा प्रकाश हिरदे च पहुंचदा है गुणा दे रहे। ये गुणा तो पता चलता है, इत्थे चानना है। सारी रोशनी सूरज दी है, सारे गुण परमात्मा देने, सब गुण तेरे मैं ना ही को, विण गुण कीते भगत न हो। मेरे घर दे च चानना है, पर चानना ते सूरज दा है, मेरा ते नहीं। अगर हिरदे दे च गुण आ जान, गुण परमात्मा देने, ठीक है। गुण रोशनी ने, औगुण अंधेरा है। जितने अवगुण होंगे उतने ही वो भटकदा होया मनुख होगा, अंधेरा होगा। जितना गुण होंगे उतने ही उदी जिंदगी दे चानना होगा, प्रकाश होगा, और जीवन सही मार्ग पर चल रहा होगा।
तो मैं फिर दोहरावां, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहिंदे ने, हे प्रभु मैं तेरे मार्ग ते चल ते पिया, तो चल दी की है, सुरत चल दी है। तुसी चल के आ गए, शरीर चल के आ गया, पैर चल के आ गए ने, इहदे नाल हाजरी असी भरी है। असी गुरु की हजूरी च नहीं गए, गुरु की हजूरी च सुरत जांदी है। शब्द नाल सुरत जुड़ेगी, हाथ पैर नहीं जुड़ते। इस वास्ते हाजरी भरना होर गल है, गुरु की हजूरी विच चले जाना होर गल है। अगर 10,000 बंदे हाजरी पे भर देन, गुरु गुरु की हाजरी पे भर देने, एक दो बंदे आउणगे जिन्हां गुरु की हजूरी नसीब होगी। कलगीधर पिता दे रसना तो ये बोल निकलिया सी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। शायद जिन्होंने साखी सुनी, हाजर गैर हाजर, गैर हाजर हाजर। जितने बैठे हुए सन उन्होंने सुरत उथे नहीं सी, ध्यान उथे नहीं सी, सुरत शब्द विच नहीं सी। हाजर गैर हाजर कुछ नहीं पहुंच सके सन, उन्हों का ध्यान उथे सी। गैर हाजर हाजर चलना ते सुरत ने ना, सुरत अगर शब्द की तरफ चल पई है तो मैं ये भी दोहरा दें ताकि गल पूरी समझ दे चावे। सुरत दे तीन अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। स्रोते शब्द तो बने हैं सुरत, भई ये ते स्रोता है, ये ते सुरत दे चे सुन रहे हैं। एक सैकेंड दे तीन घटनावां घटदियां ने एक कोई समय। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, इते स्रोता है, सुरत दे च है। अगर ये सुरत दे च है तो इन्हें सुरत आ जाएगी, अगर सुरत आ गई तो सुरत जुड़ जाएगी। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना, ये तीन घटनावां एक सैकंड दे घट दिया। जिस वक्त मनुख सुनदा है उसे वक्त ही समझ आ जाती है, उसे वक्त ही जुड़ जाता है। ये घटना एक सैकंड दे घटती है, एक सैकंड दे घटती है। इधर जबान ने आख्या वाहे गुरु, इधर मन ने सुने, इधर मन ने सुने, इधर मन नु समझ आ गई, इधर मन नु समझ आई, मन शब्द विच लीन हो गया, जुड़ गया। मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पछाण, जुड़ गया ज्योति ज्योत रली संपूर्ण है, ज्योत दे ज्योत हो गई, जीवन यात्रा संपूर्ण हो गई। होंदी एक छिन विच है, निर्माण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे। निमक निमक एक सैकंड है। एक चित जै एक छिन दे आयो, काल फास के बीच ना आयो। एक छिन एक निमक, इन अतकथनी ना समझ लेना। किसे कमरे विच 50 साल का अंधेरा होवे, गुप अंधेरा होवे, उस अंधेरे नू कढ़न वास्ते 50 साल लगणगे नहीं, एक सैकंड लगेगा, बत्ती जलाई दे गया। जन्म जन्मांतरां दे पाप दुख संताप ते अंधेरा, इनू कढ़न वास्ते कई जन्म लगणगे नहीं, एक सैकंड लगेगा। टुक दम करारी जो करो हाजर हजूर खुदा, एक दम दे टिक जाओ खुदा हाजर नाजर। ते एक दम ही आज है, बाबा फरीद कहंदे ने, आज मिलावा शेख फरीद टाकम कूंजनिया मनो मचिंदरिया। मैं पानी हुण पीवां, प्यास कल मिटेगी कि हुणे मिटदी। मैं भोजन हुण छकां, हुणे भुख मिटदी है या महीने बाद मिटदी है। मैं नाम हुण जपां, फल अगले जन्म विच मिलेगा। साल दो साल बाद मिलेगा, इन्हां गल्लां ने मनुख नूं निराश कीता होया। ये भी मैं अर्ज करां, ऐसी गल नहीं है। ऐकर करे सो ऐकर पाए महाराज गए। तत्छिन
ਟੁਕ ਦਮ ਕਰਾਰੀ ਜੋ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਮ ਦੇ ਚ ਕਿਧਰੇ ਟਿਕ ਜਾਓ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਖੁਦਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਪੀਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਿਟੇਗੀ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਹੁਣ ਖਾਵਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਕੱਲ ਮਿਟੇਗੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗਾਸੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਬੁਖਾਰ ਮੇਰਾ ਉਤਾਰੀ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਤੜਪਦਾ ਰਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਤਾਪ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰੋਗੀ ਰੋਗ ਨਾਲ ਵੀ ਮੋਹ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਨੋਚਿੰਤਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਰੋਗ ਦੇ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਐਸਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਚ ਜੀਵਣਾ ਪਏਗਾ ਜੈਸੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰੇ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਚ ਕਾਮ ਦੇ ਚ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਚ ਲੋਭ ਦੇ ਚ ਜੀਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀਵਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ ਜੀਵਣਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਤ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਚ ਰਾਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਚ ਕਾਮ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਦੇ ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਵਾਏ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਿਵਾਏ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਵਾਏ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਉਹ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਜੈਸੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੱਭਣ ਗਿਆਂ ਮਛਲੀਆਂ ਨੇ ਸੰਖ ਨੇ ਸਿਪੀਆਂ ਨੇ ਮੋਤੀ ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਤੇ ਵਾਕਈ ਮਨ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਡੁਬਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨਵਾ ਮਨ ਮੈਂ ਸਾਚਾ ਸੋ ਸਾਚਾ ਮਿਲ ਸਾਚੇ ਰਾਚਾ ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਤਨ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚੇਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਤੀ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚੱਲ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਪਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸਨੇ ਅੱਜ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਢਾਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪੈਰ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਦਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਅਕਸਰ ਮਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਘਰ ਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਘਰ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੱਚਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ
चलो एक कदम ही सही, कदम ते पुटे खड़ा ते होया। कोई 30-40 साल तो गुरुद्वारे आ रहे होवे ते अजे भी सुरत नहीं चली शब्द दी तरफ, यकीन जानो गुरु नू भी चिंता हो जाती है गल की है। इन्ने चिर हो गया गुरुद्वारे आउंदे, 50 साल हो गए गुरुद्वारे आउंदिया, अजे भी अमृत वेले उठ के रसना वाहेगुरु वाहेगुरु नहीं जपदे, गुरु नू भी चिंता हो जाती है, बोलना ही नहीं आया। बाबा बोलना क्या कहिए जैसे राम नाम रव रही, इन्हू बोलना ही नहीं आया, ये बोलता ही नहीं। 50 साल का हो गया बोलता नहीं पे, 30-35 साल हो गए ने इन्हू ये चलता ही नहीं। चलना ते सुरत ने, जपना ते रसना ने, रसना नाम जपो तब मतिए इन बिद अमृत पाओ, जपना रसना ना लो। और जपण दे जो ढंग इस्तेमाल करना है गुरु नानक ने दस दिता है, गावीए सुनिए मन रखिए, जबान गायन करे ते मन सुने, मन स्रोता बने जबान वक्ता बने। अगर जबान वक्ता बन के मन स्रोता बन गया ये पुरुष पहुंच गया। जबान वक्ता ते बनी है, मन स्रोता नहीं बने, ये चलते पे पहुंचे कोई। जबान वक्ता ही नहीं बने, जपदा ही नहीं। ये तो उस बच्चे की तरह होया, 4-5 साल का हो गया मुंहों बोल नहीं निकलते पे, मां बाप नो चिंता है गल की है बोलता नहीं। डिगना की है ते चलना की है, सत्संग विच आया चल पे है, कुछ संगत विच बैठा है डिग गए, सच बोले है चल पे है, झूठ बोल रहे है डिग पे है। दान कीता है चल पे है, बेईमानी कर रहे है डिग पे है। अमृत दी प्यास पैदा हुई है चल पे है, शराब दी तलब जाग पई है डिग पे। जिंदगी भर ये चलना डिगना चलना डिगना यही होता है। हाथ देच गुटका है चल पे है, पर गंदे गीत अलाप रहे है डिग पे है। तुसी देख सकते हो चल देने डिग देने चल दे सारी जिंदगी, चल पैने डिग पैने, कदम अगे तरफ उड़दे डिगदे पिछे दी तरफ, फिर उत्थे ही आ जांदे ने जिथो चले। उन सारा दिन कोई मनुख एक कदम अगे ते एक कदम पिछे पुटे, किथे पहुंचेगा? किधरे पहुंचेगा? चल चल के थकेगा, चल चल के टूटेगा, पहुंचेगा किधरे नहीं। दावे नाल मैं कह सकदा 40-40 साल तो जेड़े गुरुद्वारे आ रहे ने, 40 साल पहले क्रोधी सन अज भी क्रोधी ने, 40 साल पहले लोभी सन अज भी लोभी ने, 40 साल पहले झूठे सन अज भी झूठे ने, और 40 साल पहले वासना दे भरे हुए सन अज भी ने। कल ते कुछ भी ना बने, मेहनत ते बड़ी की थी, थके भी ने टूटे भी ने, 40 साल पहले हंकारी सन अज भी हंकारी, खेड़ते कुछ भी ना चले ने, चल चल के थके ने टूटे ने, पहुंचे किधरे भी ने किधरे भी। हे प्रभु मैं ते चलना ते डिगदा, तू मेर कर तू मेरी बां पकड़ खेड़ बने। दास गोविंद फतेह सतगुर की बाहां दे मोहे निस्तार, गुरु गोविंद सिंह जी हे प्रभु अपनी बां दे, अपनी बां पकड़ा ते डिगण तो बचिए। मेरे कोल ओ कन नहीं जो तेरे बोल सुन सकन, मनुख कोल जिहड़े कन ने ये पुत्र नूं सुन सकदे ने, मित्र नूं सुन सकदे ने, पत्नी नूं सुन सकदे ने, पति नूं सुन सकदे ने, भरा नूं सुन सकदे ने, मित्रां नूं सुन सकदे ने, गुरु नूं नहीं सुन सकदे। ये हकीकत है महाराज, मेरे कोल ओ कन नहीं सतगुर कहिंदे जो तैनूं सुन सकां, मेरे कोलो जबान भी कोई नहीं जो मैं अपने बोल तेरे तक पहुंचा सका,
मेरे बोल पुत्रां तक पहुंचते हैं, परिवार तक पहुंचते हैं, मित्रां तक पहुंच जाते हैं, पड़ोसियों तक पहुंच जाते हैं। ये प्रभु तेरे तक नहीं पहुंच, मेरे को इतनी तौफीक ही कोई नहीं कि मैं बोल तेरे तक पहुंचावा। पहुंच दिए गल रब तक भी, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते प्रवास मगर रखती है। जां का कहा दरगे चले, महाराज कहने जेदा बोलिया होया दरगाह दे चलदा है, परमात्मा सुनदा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने मैं एवें नहीं बोलना, दे कन्न सुनो अरदास जीओ, मैं तेरे कन्न दे च गल करनी है, मैं थोड़ी करनी तो सुन ते मैं बोल। भगत बोलदे ने प्रभु सुनदा है, क्यों उन्हां दे बोल प्रभु तक पहुंचदे ने। दिल चो निकली हुई गल परमात्मा तक पहुंचती है, जबान तो निकली हुई गल सिर्फ कन्ना तक पहुंचती है, नहीं पहुंचती दिल, दिल तक नहीं पहुंचती। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवास मगर रखती है। मेरे कोल वो अखां भी कोई नहीं जो तेनू वेख सकदियां ने, जो परमात्मा नु वेखदियां ने वो अखां इतनियां निर्मल हो जांदियां ने, इतनियां पवित्र हो जांदियां ने, इतनियां सुंदर हो जांदियां ने, ओही नेत्र खूबसूरत ने जिन्हां च परमात्मा वसदा है। ओ नेत्र ते करूप ने, मैले ने, जिन्हां दे अंदर वासना है, जिन्हां दे अंदर अनर्थ है। साहिब कहिंदे ने ओ सुंदर नेत्र भी मेरे कोल नहीं जो तेनों देख सकन। गुरु ग्रंथ साहिब दे पहले ठीकाकार भाई गुरदास ने आपदी ग्यात लई अर्ज करां, मेरे देखे मेरी स्टडी दे जो आया गालबन 150 शब्दां दे अर्थ भाई गुरदास जी ने आप कीते ने। जिहड़े जिहड़े शब्द अर्थ करन लगे गुणी ज्ञानी भुलेखा खा सकदे सन, लोकी धोखा खा सकदे सन, भाई गुरदास जी ने उन्हां नूं खोले। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात, इस श्लोक नूं भी खोलदे ने। पवन गुरु गुर शब्द है, वाहिगुरु जप मंत्र सुनाया, धरती माता महत कर ओत पोत संजोग बनाया। असी जो बोलदे हां पवन करके बोलदे हां, देही माटी बोले पवन। पवन ना होवे बोल नहीं सकदे। देखो लाश पई होंदी पानी ते शरीर च है, मिट्टी दा ढांचा भी पिया, पवन नहीं रहेगी तो बोलना कोई नहीं, बोलना ही बोलना ते पवन करके। देही माटी बोले पवन, बोलन हार परम गुर ए ही। बोल के ही संबंध जुड़दे ने, बोल के ही संबंध टुटदे ने। कुछ ऐसा बोल है, बोल होंदा कि ओपरा बेगाना अपना हो जांदा। कुछ जबान चो ऐसे बोल निकलदे ने, मुद्दतां दी मित्रता दुश्मनी च बदल जांदी। एक बोल, एक बोल, एक बोल ऐसा है बंदे नूं तपा के रख सकता है, शायद सारी रात तड़पदा रहे। पर जे एक बोल तड़पा के रख सकता है, एक बोल शांत भी कर सकता है, सुकून भी दे सकता है। खेड़ के सारी बोलां दी, मनुखी दुनिया दी सारी हलचल बोलचाल ते खड़ी है, ये भी मैं अर्ज करते हैं। सारे संबंध भी बोलचाल ते खड़े ने। मनुख कह देंदा उथे साडी बोलचाल है जिथे संबंध होवे, जिथे संबंध ना होवे कहिंदा उथे साडी बोलचाल कोई नहीं। जिथे संबंध गूढ़े होवन कहिंदा उथे साडी बोलचाल बड़ी चंगी है, जिथे ना होवे भई साडी बोलचाल ही कोई नहीं। संबंध जुड़दे ने बोलन करके, ते बोलना पवन करके। इन्हां पंज तत्तां दे चो पवन नूं गुरु नानक ने गुरु कहा, क्योंकि इस करके ते बोलना है वाहेगुरु वाहेगुरु, ताई रसना जत सदी अंदर श्वास चलन पवन है। भावें पानी पिता है, भावें धरती मां है, पर पवन ते गुरु है, संबंध जोड़दा है परमात्मा नाल। ऐसा कुछ बोलना है, मोह के बोलन बोलिए, जित सुन धरे प्यार। कुछ है ऐसा बोलना कि परमात्मा नाल संबंध जुड़दा है, कुछ है ऐसा बोलना संसार नाल संबंध जुड़दा है, परिवार नाल संबंध जुड़दा है। जिहड़े बोल परिवार नाल संबंध जोड़दे ने, संसार नाल संबंध जोड़दे ने, उन्हां नूं कहिंदे ने शब्द। ते जिहड़े बोल परमात्मा नाल संबंध जोड़दे ने, उन्हां नूं कहिंदे ने गुर शब्द।
ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਚਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਖੈਰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ 90% ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਬੋਲ

परिपूर्ण परमात्मा ने मनुख नु दो तन दिते ने, एक अस्थूल एक सूक्ष्म। वो जो सूक्ष्म है वो मन है और जो अस्थूल है वो तन है। रोग अक्सर तन दे तल ते प्रगट होंदे ने और सोग अक्सर मन दे चौंदा है। इस तरह रोग ते सोग दे सारी जिंदगी लंघ जांदी है। सूक्ष्म शरीर सोग नाल ग्रसिया होंदा और अस्थूल शरीर रोग नाल ग्रसिया होंदा। सोग किस तरह दूर होवे और सोग की है? चाया सी कुछ हो गया कुछ सोग, मंगी सी कुछ और चीज मिल गई है कुछ और सोग, जाना सी किसे होर पासे पहुंच गए किसे होर टिकाने ते सोग, आवना सी किसे होर ने आ गया कोई होर सोग। मन दी ख्वाहिश तो उल्ट जो कुछ भी हो जांदा है सोग नु जन्म देंदा है। रोज रोज असी जो कुछ चाहते हाँ नहीं आता और उस तो विपरीत हो जाता है तो मन सोग नाल भर जाता है। हर नवा दिन नवे सोगां नू जन्म देंदा है, क्यों कि हर दिन कुछ साड़ी मंग ते होंदी है, कुछ साड़ी चाहत ते होंदी है। ते जद भी उस तो विपरीत हो जाए और बहुत वड्डे पद्धर ते हो जाए तो मन दे तल ते सोग पैदा हो जाते हैं। कबीर कहते ने, जो मैं चितवो ना करे क्या मेरे चितवे होए, अपना चितवे हर करे जो मेरे चित ना होए। एक ते मेरी चाहत है, एक प्रभु दी चाहत है। प्रभु दी जो चाहत है उस नाल मैं राजी नहीं, मेरी जो चाहत है वो पूरी नहीं हो रही तो सोग। ये 20वीं सदी रोगां नाल ते भरी है पर मानसिक सोग नाल भी भर गई। अजो के विज्ञानक मनोचिंतक इसका इलाज लभदे ने वत्ती मनोरंजन। मनोरंजन मन सोग दे च है तो कोई मनोरंजन, कोई खेल, कोई तमाशा, कोई रंग, कोई रूप, इनू वेखो उस दे च बैठो खेलो ताकि सोग मिट जाए। पर कौन इना सियाणियां नू दसे सोग मिटदा नहीं, वक्ती तौर ते सोग भुलदा है। और जैसे जैसे उम्र वधदी है सोग भी वधदा है। सोग दे च हौके आउंदे ने, सोग दे च पछतावे आउंदे ने, सोग दे च साड़े आउंदे ने, सोग दिच जलन आती है। सोग एक ऐसी अग्नि है जिस दिच मनुख की सोचण शक्ति भी जल जाती है, मनुख की विचार शक्ति भी जल जाती है, मनुख का सदाचार भी कई दफा जल के खाक हो जाता है। सोग एक ऐसा मानसिक रोग है। तन दिच रोग होवन, मन दिच सोग होवन तो ऐसे